0: बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत के दुखी ना दुखी ना मरे ना जवाइए,
0: संत के दुखी की पूजे ना आसा,
1: संत का दुखी उठ चले नरासा,
0: संत के दोखना दृष्टि कोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए।

0: साध सेवा बड़ भागी पाइए,
1: साध संग हर कीर्तन गाइए,
0: अनक बिघन कह साधु राखे,
1: हर गुण गाय अमृत रस चाखे,
0: ओट गई संत दर आया,
1: सारा सुख।

0: की सर पर रखे,
1: अपने दास को दे वडाई,
0: अपने सेवक को नाम जपाई,
1: अपने सेवक की आप पत रखे
0: ताकि गतमित कोई न लाए।

0: सुनकर बचन करने गाने
1: मन संतोखा तम पति आने
0: पूरा गुरु वाक्यो जा का मंत्र
1: देश पेखे हुए संत
0: गुण बेअंत कीमत।

0: पर भगवान
1: सर वैकुंठ मुकत मोक पाए
0: एक निम करके गुण गाए
1: अनक राज भोग बड़े आई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: वो भोजन का प्रसंगीत
0: रसना जपती हर हर नीत
2: बलि सुकरनी शोभा।

0: पति हारा
1: तै कौन कथे कौन सुनने हारा
0: वो बेअंत ऊंचते ऊंचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: जे आप रचियो पर पंचकार
1: तै गुण में कीनो विसार
0: पाप पुण तै पई कहावत
1: ओ नर को सर्व शालत
0: आज

0: फल पाव
1: हल्त पल दो लियो सवार
0: राम नाम अंतर उधार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया
0: जिस मन बसे ते साच परिख्या
1: मन तन नाम जपो लिवलाए
0: दुख दर्द मन ते पौ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी
0: दरगे निभिए खेप तुम्हारी
1: एका टेक रखो मन माहे
0: नानक बहर न आवे जाए
1: तिस से दूर कहाँ को जाए
0: उपरे राखन हार ते आए
1: निर्भो जपे सगल पौ मिटे
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छूटे
1: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख
0: राम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटे अहंकार
0: किस जन को कोई न पंचन हार
1: सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा
0: नानक ताके कार्य पूरा
1: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट
0: दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: तन सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुर प्रदान
1: जिस मन बसे

0: सत वचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सोई सुख माने
0: कर्म करावन हाल प्रभु जाने
1: अंतर बसे बार भी ओही
0: नानक दर्शन देख।

तराय अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लए छड़ाया। श्लोक महला पहला।

पंडित पढ़नर खीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनु मोहनिया मन मोहन स्वर्ग माछ पयाले गावन तुदनु रतनु पाए तेरे

रहाओ साचे नाम की तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकर आखण पाहे वडा न होवे घाट न जाए ना वो मरा न होवे सोग दिंदा रहे न चुके भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए

सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम अगम अपारा सब त्याम है सब त्याम है तुद जी हर सच्चे सिरजन सहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी आओ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबान हर त्यावै तुद जी से जन जुग मैं सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी

अनेक तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तुम आद पुरख ब्रह्मर करता जी, तुद जेवड अवरना कोई। तू जुग जुग एको सदा, सदा तू एको जी। तू नहचल करता सोई, तुद आपे भावे सोई वरतै जी। तुम आपे करे सोई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गो।

हमरे दुष्ट सबै तुम गाबो आप हाथ मुहे बचाबो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबाय करतारा मोर अच्छा निज कर दय करे है सब बैरन को आ संगरे है पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवरना ते आहूं जोबर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है आप हाथ दें मुझे उबर है मरण काल का त्रास निवर है उजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करे ओ रक्षा राख रे ओ मय राखण हारे साहेब सन सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरहा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सगल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सत्रन को पल मो बद कियो घट घट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचर अस्तुला सपर कृपा दुष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिशन घट घट के पट पट की जन जबद करख करा कर तारा प्रजा तर तब देहे अपारा जब आ करख कर तु हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन सृठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सभी

मानत महामूढ़ गज भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोय तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सुरूपा रंग पयो राव कहीं पुपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो संग्र इकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभ आद जुगा स्वरूप स्वयंभव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तुजतव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवय मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दुष्ट तन जाहे ने हरहो ताके ताप तनक मैं हरहो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा शब सके ना कोई एक बार जन तुम्हें संभारा

हो सहाय, दुष्ट दोख तेले हो बचाय। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को शाय करता। श्री अस्तुजा पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बांचत फल पावे सोई, दुखना तसे ब्यापत कोई अड़िल। सुने गुं यो याहे सुरसना पावई, सुने मूर्चित लाहे चतुरता आवई। दुख दर्द पाव निकटनत नर के रहा, ओ जो याकी एक बार चौपाई को क्या है। चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय, अर्ध सहस मुंतीन कह जाय। भाद्रव सुधी अष्टमी रब बारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रो पखियाने, त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापतम, सत शुभम सत अबजो दोहरा। दास जानकर दास पर की जय कृपा अपार, आप हाथ दे राख मोहे मान क्रम बचन विचार। चौपाई मैना ग्रह प्रथम मनाऊ, किशन बिशन कबू नैत्याऊ। कान

मजे प्रत परिया चन चन शत्रु मारे मरिया देख तेग जग में दऊ चल्ला राखा मह और ना दलाय तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो।

हाथ उबारो हमरे सबैरिन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बाहर करो कविता बिदनाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूकोए कबल्यो सुधारो कबे बाज दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहे हो जग माहे ज्योते प्रभु को ध्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बि विचार कछ नाहे जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभु को पयो

शरण्याय पंत चला तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो नितुटते आए हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मोह कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रब ससगुरूर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुरग बास रग बरकरा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ये कथा सुने अरगावै दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई सम्मत सत्रह सहस पछावन हाड़ वधी प्रथम सुखदावन त्व प्रसाद कर ग्रन सुधारा पूल परी लो लियो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सगल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते कहूँ मांग तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्य हो सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद गहे हम एक ना जाने हो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे हो सब तुहे बखाने हो दोहरा।

श्री वाहे गुरु साहिब जी, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत शाड बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पै भुले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ की रत की, गुर

एहन सहज सुपाए दर्शन प्रसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

0: इतनी सेवा प्रवान कर रहे जी, कीर्तन करते हैं पिंडा दे माफी वशन भाई गुरमेल सिंह जी कैनेडा वाले आप जी नो पितरबाणी कथा राय जोड़ने का पास प्यार का शरण करो जी। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के संपूर्णता दे ऐतवार वाले दिन आ रहे हैं, मंगलवार पहला प्रकाश दड़ आ रहा है। दीवान सजन गया आप जी ने हाजरी भरनी है जी। वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।
0: Thank you.

गै मुक कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

साध कै संग सरबिन दान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध।

मुख ताको जस रसन बखान जेह प्रसाद तिर रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पान ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पत से ती कर जावे जेह प्रसाद अरो कंचन देही लेव लाव तेह राम स्नेही जेह प्रसाद रउला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जेह प्रसाद तेरे सकल सिद्र ठाकै मन सरणी पारे ठाकुर प्रभ ताकै जेह प्रसाद तेरे को ना पहुचे मन साह साह सिमरो प्रभुचे जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जेह प्रसाद अभूखण पहरी जय मन तेह सिमरत क्यों आलस की जय जेह प्रसाद असव हस्ते सवारी मन तेह प्रभ को कबहु ना बिसारी

राष्ट्रपति साध के संग भुखु जिल हो साध संग बल सगली खोद साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब उतन बेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महसमानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आभ बस पंचा साध संग मृत रस पुंचा

का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,

कोर कई कोट पर धर्म को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम वाह, कई कोट प्रदेश परमा है।

कई कोट पाथर वृक्ष निभ जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदान इंद्र सर छत्र,

जब लाग भो मगन संग माए तब लाग धर्म राज देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हाँ छूटै।

तदहो सियाल्प सुरजनह सिमरह हर हर राय एक आस हर मन रख हो नानक दुह ब्रह्म पव जाय अष्टपदी।

करे। सो सेवक कहु कह ते डरे जय साल साल तैसा दृष्टाय अपने कार्य मह आप समाय। सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत्सा बुझिया जब देखो तब सब कह मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल।

तिसे बुझाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न अस्पदी विनासी ब्राह्मण में राख मानो की तू प्रीत त्याग तिहते परे नाज किस को सर्व निरंतरे को सोए

के संग है राते रचना अपनी कर धारी अनक बार नानक बरहारी सलोक साधना चाले बेन भजन बिख्या सगली सार हर हर नाम कमावना नानक तन सार अस्पति

गोपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि पुरुष कान करतार भक्तन के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भक्त पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीति अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोह पाए एक निम खर के गुण गाए अनक राज भोग बडयाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा त्रवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत्र

कहो गणी। जब एक कहे हर अग्मे पार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सहस पाए, तब शिव सकत कहो

ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरुख पुरुख पात होता, तह बिन मैल कह क्या तोता। जह निरंजन कार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह

दूर कथना कथिन आवतोट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुकमी हुकम चलाए राह नानक बिन साहिब परवाह साचा साहिब साच नाहे पाख्या पाहु अपार आखे मंगे देहे देहे दात करे दातार हेर के अगे रखिया जिद सा दरबार महाओं के बोलन बोलिया जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार

सतरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय ना सुजाई जे तस गुण कोय करे। सुनया।

पितामानुदानन्तरवर्ग स्वर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अपर्ण है अभूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अजूज है अजंज है अमी खैर भी खे अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलिक है नरसरीक है नृलम है असम है अगम है अजम है अभूत है अशूत है अलोक है अशोक है कर्म है अपर्म है अजीत है पीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयाद छंद नमो सर्वाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो धान धाने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो शस्त्र मानन परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखीय परमी अपोगी भुगते नमो जोग जोगे स्वं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देव स्तर्मे नमो रोगर्ता नमो राग रूपे नमो शाहहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संसनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सदरंग सर्वंग प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा भृदकर्ता अद उर्द अर्दंग अगंग ओग हर्ता भ्रंग भ्रंग परमेश्वर प्रोष पालंग सदा सर्वदास्य दाता दयालंग अशेदी अपेदिया नामंग अकामंग समस्तोपराजी समस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है पीता है पे है प्रभु है अजू है अदेश है पेश है भुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे आनंदी सुरभे नमो सर्वाने समस्ति निधाने नमास्तवंग निर्लाते नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग गंजे नमास्तवंग पंजे नमास्तवंग काले नमास्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृसं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हृदयं निवासी चरपट छंद त्वप्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल अजोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अला कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग तरानं सर्वंग पुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल शांद त्वा प्रसाद आद्रुपनाद मूर्त अजोन पुरखापार सर्मान तर्मान देव पेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जतर ततर विराज हि अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाग रूप रंग ना रेखाद पुरखुदार मूर्त अजोन आदा सेख दे स्वर ना पेज जाक रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विशा फैलो अनुराग नाम काम विहीन पेख तामुन है जाहे सर्वान सर्वतर मांस दय मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अंत को भरेक दे पे बना जाने जे वेद और कतेब रूप रंग ना जात पास हो जाने के जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण विहीन चकर बकर फिर चतर जग मानी प्रतीन लोक जादा कह बिख जग जाप ही जय जाप आदि नाद मूर्त थाप्यो सब जय था परम रूप मुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सब रचियो स्वयं भव गण भंजन हार काल हीन कला संयुक्ता कार पुरख देश धर्म धाम सु परम रहता भूतला खपेस अंगरागना रंग जाके जात पात न नाम गर्भगंजन दुष्ट भंजन मुग्धाय काम आप रूप आमीक आप रूप आमीक अनुसत एक पुरख अवधूत गर्भगंजन सर्वजन आद्रुप असूत अंगहीन अपंगनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्वगोप्रत सर्वलायक सर्वकायक सर्वगोप्रत पार सर्वगंता सर्वंता सर्वध्यन भेख सर्वशास्त्र न जाने जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नेत भाखद नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवई बहुचेत मदभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग अनांगन प्रकाश निस्दन अनास आजान बाहु शाहन शाहु

संगत मित पार गुणगन उदार मनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्वत प्रचन्नमित गत अखंड आलस्य कर्मादृश्य धर्म सर्वा प्रनाढ्य अन्न भाढ़ चाचरी शांत त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरिंद्र नामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र भरती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र गाले चतुर चक्र वासे चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी शांदना सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे पवित्र प्रतिश अधिश अदृश अग्रस भगवती शांद तवा प्रसाद कथ दे के आ शुज देश के आ बिज बेस के आ गंज गर्म के आ भंज भरम के आ पिज लोके के आ दित सोके के भूत भरण के विभूत करण के राजंग प्रवाह है के धर्मंग तुझा है के आ शोक भरण के सर्वा अभरण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव अनुप है के आद अदेव के आप अपेव है के चतरंग विहीन के एक अधीन के रोजी रजा के रही मेरे हाके के पाग बेब के गैबल गैब है के अफुल गुनाह है के शाहान शाह है के कारण करिंद के रोजी दहंद है के राज करहीम के करमंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग वही मैं के आकल अलामे के साहिब कलाम के वजू है तमाम रजू है मेसुल सलाम है सलीखुत मदाम है गनीम शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रिजुल निधान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खराज है नृग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है बेधी अनुब है समस्तो बराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैवल काम है निर्वास रूपे अगाध है अनुभ है ओंगाध रूपे नास रूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकादे त्रिभर्गन त्रिभादे त्रिभंग अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गम त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्भागे सुसर्भानुरागे त्रिभुक्स रूपे शिजय शुत गय नरकंग प्रणास है पृथुल प्रवास है नृक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्स रूप है प्रयुक्त सदैव सदा है विभुक्स रूप प्रयुक्त अनुप है नृक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्स रूप प्रयुक्त अनुप है चाचरी शांत अपंग है अनंग है अपेख है लेख है परम है कर्म है नाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है तंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है नास है प्रकाश है निचिंत है सुनंत है अलिख है दिख है लेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद प्रसाद

सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश है, सर्वनाश है, करुणाकर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, कलखंडस है, परते पर है, करुणाकर है, अजपा जप अथपा थप, कर्ता कृतम, मृता मृता मृता मृता, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरण तृतम, तेश्वर है, परमेश्वर है, कर्ता कृत है, मृता मृत अजबा कृत है, मृता अमृत है, नर नायक है, कलकायक है, विश्वंबर है, करुणाल्य है, नृप नायक है, सर्पायक है, पपंजन है, अरगंजन है, रवतापन है, जब जापन है, अकलं कृत है, सर्वा कृत है, कर्ता करे अर्थार है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म असय जस के जस है, भुजंग ब्रयाद छंद, नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग ताम संग सांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो अंतर मंत्र नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने न भोज भोजे नमो नमो भोज भोजे नमो बान बान नमो कलहे कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिया नादंग विभुते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रभंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजवनी अमोनी नारागे नारंगे नरूपे नारेखे अकर्मंग अकर्मंग अपरमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्ल प्रणामे समस्ल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्ल निवासे निरकामंग विभूते समस्ल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंग सतरंग प्रणासी गनिमुल करिंदा समस्ल निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियंग करियंग करिमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुगालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते

जन को यही सुहावै, हर जन हर जन को यही सुहावै, यही ओनू शोभा दिंदा है। हमेशा मेरे वाहिगुरु जी दे राम दे विच रत्ता रहिंदा है। लोभन मैं लोभी लोभायो, तो हर रंग रचे ज्ञानी, हर जन को यही सुहावै, पेख निकट कर सेवा सतगुर, हर कीर्तन ही त्रिपतावै। फिर कहिंदे अमलन सिओ अमली लपटायो, होमन होम प्यारी, कीर संग बारक है लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी। जेवे अमली अमल विच लपटाए मान जे, जेवे जगीरदार जमीन दे विच लपटाए मान जे, छोटा जा बच्चा जड़ा माता दे दुध विच लपटाए मान, ते जड़ा सेवक है उह सतनाम श्री वाहिगुरु विच लपटाए मान है। कीर संग बारक है लीना, प्रभ संत ऐसे हितकारी, विद्या में विद्यांशी रचिया, नैन देख सुख पावे, जैसे रसना साधु लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावे। जेवे रसना जबान जेड़ी है बिठे सलोने विच बड़ा आनंद मनदी है, जेवे जबान रसना जेड़ी स्वाद लैंदी है, तेवे सेवक जेड़ा गुरु गुरु जप के स्वाद लैंदा है, आनंद लैंदा है। जैसे रसना साधु लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावे, तेवे जेड़ा मेरा वाहिगुरु जी का सेवक है वह वाहिगुरु जी के नाम विच रत्ता रहिंदा है। विद्या में विद्यांशी रचिया, नैण देख सुख पावे। गरीब निवास सचे पातशाह कहिंदे विद्या वाला विद्या विच है, हटवाणी तन माल हाट कीत, जुआरे जुए माहे चीत, अमली जीवे अमल खाए, त्यों हर जन जीवे हर नाम ते आए। जेवे बाणिया अपनी दुकान विच मस्त है, बाणिया पुरुष नूं बा दुकान तो बिना काम ही कोई नहीं है। हटवाणी तन माल हाट कीत, जुआरी जुए माहे चीत, ते जुआ खेडन वाला जुए दे विच मस्त है, अमली जीव है अमल खाए, त्यों हर जन जीव है हर नाम ते आए। अपने रंग सब को रचे, जित प्रभ लाया तित तित लगे, मेघ समय मोर निरतकार, चंद देख बिगसै को लार, मातक माता बारक देख आनंद, त्यो हर जन जीव है जप गो बिंद। जदों बदल आउंदे ने, जदों बदल आउंदे ने, मोर नू कहना नहीं पैंदा भी तू पैल पा, ओनू कहना नहीं पैंदा भी तू नच आनंद लै, पर जदों गुरु दा

सारे अखां बंद करके उच्ची बोल के सुनो, फिर वो विचारां नालों फिर साडी लिव टुटनी है। उन्हूं माया गया, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, बारंग बार बार प्रभ जपिए।